हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा।